आकाशवाणी पुणे गायक वृंद ने गाई रचना आपने सुनी समूह स्वर में। श्रोताओं अब हम सुनाने जा रहे हैं मनोहर सबनिस के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, मनोहर सबनिस के स्वर में आप सुन रहे थे संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। आइए कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं मधुकर कुलकर्णी की रचना अंजनी केळकर के स्वर में।

अंजलि कैकर ने गायी हुई मधुकर कुलकर्णी की इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे रागम 24/7 DTH चैनल पर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भाटियार में ख्याल गायन. कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो लीजिए प्रस्तुत है राग भाटियार में ख्याल गायन. कलाकार पंडित संदीपन समाजपति.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी फोकल रेंडिशन. लिसन टू अ ख्याल इन राग भाटियार. आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग पंडित संदीपन समाजपति. Accompanying on the tabla, Pandit Sujit Saha, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. Now, listen to a khayal in Raag Bhatiyar by your artist, Pandit Sandipan Samajpati.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में सितार वादन। आज के कलाकार हैं अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी में सितार वादन, कलाकार अंजन साहा।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग भटियार बाय आवर आर्टिस्ट पंडित संदीपन समाजपति। एकम्पानिंग ऑन द तबला पंडित सुजीत साहा एंड ऑन द हारमोनियम रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल इन राग जौनपुरी। आवर नेक्स्ट आर्टिस्ट अंजन साहा, एकम्पानिंग ऑन द तबला तरुण रॉय। नाउ लिसन टू अ सितार रिसाइटल इन राग जौनपुरी बाय आवर आर्टिस्ट अंजन साहा।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a sitar recital in Raag Jaunpuri by our artist Anjan Saha, accompanying on the tabla Tarun Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं ठुमरी दादरा और टप्पा गायन। प्रारंभ में सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व द्वारा प्रस्तुत दादरा। बोल है, मोरे राजा वड़िया खोले, रस के बूंद न पड़े। साथ संगत हारमोनियम श्रीराम शाहपुरकर, तबला चंद्रकांत कामत और वायलिन फैयाज हुसैन। तो आइए सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व द्वारा प्रस्तुत दादरा।

अभी आप सुन रहे थे पंडित छोटा गंधर्व द्वारा प्रस्तुत दादरा। आपके साथ हारमोनियम पर थे श्रीराम शाहपुरकर, तबले पर थे चंद्रकांत कामत और वायलिन पर फैयाज हुसैन। और अब सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व द्वारा प्रस्तुत ठुमरी। बोल है कहेरी ननदिया भरे बोल। सत्संगत हारमोनियम श्रीराम शाहपुरकर, तबला चंद्रकांत कामत और वायलिन फैयाज हुसैन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित छोटा गंधर्व द्वारा प्रस्तुत ठुमरी। आपके साथ हारमोनियम पर थे श्रीराम शाहपुरकर, तबले पर थे चंद्रकांत कामत और वॉयलिन पर फैयाज हुसैन। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए रहे विदुषी सिद्धेश्वरी देवी द्वारा प्रस्तुत मिश्र पिल्लू राग में ठुमरी। बोल है श्याम मोरे गली आना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विदुषी सिद्धेश्वरी देवी द्वारा प्रस्तुत मिश्र पिलू राग में ठुमरी, और अब सुनते हैं विदुषी सिद्धेश्वरी देवी द्वारा प्रस्तुत टप्पा। बोल है माहेरा बालम आना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विदुषी सिद्धेश्वरी देवी द्वारा प्रस्तुत टप्पा। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। आगम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज सो बना ब्याहन आया, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोरे घर आजा. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ हैव फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खां. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. Mujahid Hussain Khan first presents rag Puriya Kalyan, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Ektal, and this will be followed by the Chota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पुरिया कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं पीर न जानी बलमा, और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग पुरिया कल्याण। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, वी नाउ हैव मुजाहिद हुसैन खान presenting Rag Malkons, in which you will hear the Bada Khayal set to Vilambit Ek Taal, followed by a Tarana set to Teen Taal.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं सुंदरी वादन। कलाकार है यशवंत जाधव। आपने सुंदरी पर प्रस्तुत किया राग हंसध्वनि सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग हंसध्वनि, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुंदरी पर राग हंसध ध्वनि। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमाद सारंग, कलाकार यशवंत जाधव। लंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमाद सारंग, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुंदरी पर राग मधमाज सारंग। कलाकार थे यशवंत जाधव। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं शाश्वती बागची. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शौमेन सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरण मोय मित्रा. तो लीजिए प्रस्तुत है राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन. कलाकार शाश्वती बागची.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to a khayal in the rag Shuddh Kalyan. Our artist is Shashwati Bagchi. Accompanying our artist on the tabla is Shomen Sarkar and on the harmonium is Hiranmoy Mitro. Listen now to Khayal in the rag Shuddh Kalyan. Our artist, Shaswati Bagchi.

Sarega,

0: कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं समित भट्टाचार्य जी। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन नट्टो। तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल में तबला वादन, कलाकार समित भट्टाचार्य जी।
1: You were listening to a khayal in the rag Shuddh Kalyan. Our artist was Shashwati Bakchi. Accompanying our artist on the tabla was Shomin Sarkar, and on the harmonium was Hiranmoy Mitro. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime, Indian music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to the tabla in Teen Taal. Our artist is Shomit Bhattacharya. Accompanying him on the harmonium is Rotan Notto. Listen now to the tabla

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे समित भट्टाचार्य जी। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Teen Taal. Our artist was Shomit Bhattacharya. Accompanying him on the harmonium was Rotun Notto. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

जो आकाशवाणी हैदराबाद से रिटायर्ड हुए थे। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है

0: भास्कर तथा मृदंग कोमल वाधवणि जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। अपने मधुर, सहज और भावपूर्ण मृदंगम वादन के कारण श्री काली प्रसाद बाबू को स्नेहपूर्वक द विस्पर ऑफ द मृदंगम और मेलोडिक परक्यूशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वे गौरवशाली वाराणसी संगीत परंपरा के एक योग संवाहक हैं और दक्षिण भारतीय मृदंगम वादन की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज रात्रि के इस मृदंगम वादन के कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाली कलाकार हैं वायलिन पर सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू इज एन एमिनेंट टॉप ग्रेड मृदंगम आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद, नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल आर्टिस्ट्री एंड म्यूजिकल सेंसिटिविटी। He is the grandson of the late Sri Varanasi Gantaya Shastri, the legendary mridangam exponent honored with the title Andhramani. He mastered his art under his father, a renowned mridangam vidwan, late Sri Varanasi Venkata Subrahma Shastri, who retired from Akashvani Hyderabad. With more than 3 decades of dedicated service in Akashvani Hyderabad, he has accompanied numerous eminent musicians and enriched Indian classical music. His artistry is distinguished by precision, tonal beauty, restraint, and profound rhythmic sensitivity. He has been honored with the prestigious titles Mridanga Saukhya Bhaskara and Mridanga Komala Vadyamani. Affectionately known as the Whisper of the Mridangam and Melodic Percussionist, he is celebrated for his soft, soulful, and graceful strokes. A proud torchbearer of the illustrious Varanasi musical lineage, he represents the rich South Indian mridangam tradition. In tonight's broadcast, Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu is supported on violin by VSP Gayatri Shivani.
0: Vidwan Shri Varanasi Kali Prasad Babu apne mridangam lay vinyas ka aarambh chaturashtra jati triput tal se kar rahe hain.
1: Vidwan Varanasi Kali Prasad

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृदंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: इसी के साथ आज के इस राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Laivinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगीतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पानसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निमाड़ प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
0: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट अ पखावज रिसाइटल बाय श्री विठल कुमार राजपुरा। Deeply rooted in the musical soil of Indore, the promising Pakhavaj maestro of the prestigious Nana Saheb Panse Gharana, Shri Vithal Kumar Rajpura is an A-grade artist of Akashwani. Shri Rajpura has received rigorous training in Pakhavaj from the top-grade artist of Akashwani, Pandit Goswami Shri Devki Nandanji Maharaj. The hallmark of Vithalji's playing style is the absolute clarity of his syllables, his swift readiness, and the divine rendition of Chabi Parno, which deeply touches the heart of music connoisseurs. A gold medalist at the National Youth Festival and adorned with honors such as Kalke Kalakar and the Nimad Pratibha Award, Vithalji has spread the magic of his art on prestigious stages across the country. In numerous national events like Gamak Utsav of Tansen Samaroh, Kalidas Samaroh, and Chakradhar Sangeet Samaroh, Vithalji has mesmerized audiences with his solo performances and jugalbandis. In today's program, Shri Vithal Kumar Rajpura is presenting Jhap Taal on the Pakha.

दुम के टक टक धा धा किट किट धा किट तक दुम के टक टक दुम के टक धा तक किट तक दुम के टक धा किट तक धा तक किट तक दुम के टक धा किट तक धा तक किट तक दुम के टक धा तक दुम के टक धुम के टक तक धा धा किट किट धा किट तक दुम के टक दुम के टक धा तक किट तक दुम के टक धा किट तक धा तक किट तक दुम के टक धा किट तक धा तक किट तक दुम के टक धा तक दुम किट तक धुम किट तक धा धा किट किट धा किट तक दुम किट तक दुम किट तक धा तक तक दुम किट तक धा किट तक धा तक तक दुम किट तक धा किट तक धा तक तक

ಪರಮೇಶ್ ಚಕ್ರಧಾರ್.

के तट मंद मंद गति चली जात वर्ष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित बना दि प्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखी राधारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जा वृष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित बना दि प्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखी राधारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जा वृष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र मुखी राधा।

0: अभी आपने सुना श्री विट्ठल कुमार राजपुरा का पखावज पर बजाया छत्ताल। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे थे श्री जगदीश बारूट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: यू जस्ट हर्ड छत्ताल प्लेड ऑन द पखावज बाय श्री विट्ठल कुमार राजपुरा। He was accompanied on the sarangi for the lehra by Shri Jagdish Barot. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार है पंडित नरेंद्र नाथ धर. राग है जौनपुरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ और दो गतें. विलंबित गत और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर राम कुमार मिश्रा. दिस इज रागम 24/7

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित नरेंद्र नाथ धर से राग रागेश्री में आलाप और दो गते, विलंबित गत और द्रुत गत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर, यू विल लिसन राग रागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे पंडित नरेंद्र नाथ धर, संगत कलाकार थे तबले पर राम कुमार मिश्रा। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

Da ba ga ba da ni da ba da ni.

ಧಾರಿ ಧರಿ ರಮಪದ ಪದ ಬಬ ನಿಧ ಬಬ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present vocal rendition in rag Bairagi by Pandit Baldev Raj Verma.

0: अभी आप पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग बैरागी बाय पंडित बलदेव राज वर्मा। नाउ लिसन टू अ सितार रिसाइटल इन राग भैरवी बाय पंडित देवव्रत चौधरी।

0: अभी आप पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजा राग भैरवी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a sitar recital in Rag Bhairavi by Pandit Devrat Chaudhary. This program is a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना से, जिसे गाया है मनोहर सबनीस ने।

मनोहर सबनीस ने गाई संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अंजलि केलकर के स्वर में सुधांशु की यह भक्ति रचना।

सुधांशु की भक्ति रचना अभी आपने सुनी अंजलि केड़कर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की ये भक्ति रचना।

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी राम फाटक के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत गोणाई की। आइए सुनते हैं विदुषी मंजरी आलेगांवकर के स्वर में। संगीतकार हैं रविंद्र खासनीस।

विदुषी मंजिरी आलेगावकर के स्वर में संत गोणाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे रविंद्र खासनीस। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शंकरनाथ बुआ पड़खेकर और सहकारियों के स्वर में यह भक्ति रचना।

शंकरनाथ बुआ पड़घेकर और सहकारियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है कुमुद कुलकर्णी ने।

कुलकर्णी ने गाई संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुलसीदास की, जिसे गाया है विनायक राव पटवर्धन।

विनायकराव पटवर्धन ने कही संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है धनश्री घाटे ने।